ये आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, सक संवत 1948, आश्विन माह की तिथि 18, तदनुसार 10 अक्टूबर ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 3:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाई भाषा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे महालया पर विशेष कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आसान पर नाभि कमल से जाग उठे वावि कल्प के सृष्टि विधाता ब्रह्मा, परंतु विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न मधुकैटभ असुर

संलग्न सर्वशक्तिमान विश्व पिता विष्णु को जागृत करने हेतु जगत की स्थिति संहार कारिणी विश्वेश्वरी जगत जननी हरिनेत्र निवासिनी निरुपम

वचा खड़गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण घूषुणी परिघायुधा सौम्य।

ধন রূপায়িত প্রতিমা আর তব অচিন্ত রূপচর।

पुनः ज्ञान मग्न हो बैठे। इधर दुर्धर्ष दैत्यराज महिषासुर के पराक्रम से परास्त हो देवतागण स्वर्गाधिकार से वंचित हुए।

उपस्थित हुए। कारण ब्रह्मा के वरदान से ही था महिषासुर अपराजेय। उनके द्वारा दैत्यराज का क्षय असंभव जान उनके निर्देशानुसार देवताओं ने कमल योनि ब्रह्मा जी को अपना प्रतिनिधि बना वैकुंठ में जा देखा। भगवान विष्णु और देवाधिदेव भगवान शिव परस्पर आलाप मग्न है। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कह सुनाई महिषासुर के दुर्विषह अत्याचार की करुण कहानी। स्वर्ग भ्रष्ट देवताओं का विषाद सुनते ही परम शांत योगी वर महादेव का सुगौर मुखमंडल क्रोध से रक्त कमल के समान लाल हो उठा। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण की तन

ओम ते महाशंख विश्वयोनि विष्णु और महारुद्र के शरीर से प्रस्फुटित हो निकली तेज की परम ज्योति, ब्रह्मा और देवगण के मुखमंडलों से निकल चला तेज, पर्वत प्रमाण ज्योति पुंज ने प्रज्वलित उताशन के तुल्य दे दीप्यमान किरणों से दिगमंडल को पूर्ण कर दिया। तेज रश्मिया एकत्रित हो परमा सुंदरी रूपवती दिव्य देवी मूर्ति में परिणत हुई।

कार्य सिद्ध हेतु सर्वदेव शरीरज तेज पुंज से प्रकाशित उनका अभिनव आविर्भाव हुआ महिषमर्दिनी रूप में। देवी सज्जिता हुई विचित्र रूपा रणचंडी रूप में। हिमाचल ने सिंह वाहन दिया विष्णु ने चक्र पिनाक पाणी शंकर ने शूल यम ने दंड काल देव ने सुतीक्ष्ण खंग चंद्र ने अष्टचंद्र शोभा से युक्त चर्म सूर्य ने धनुर्बाण विश्वकर्मा ने अभेद वर्म ब्रह्मा ने अक्षमाला और कमंडल कुबेर ने रत्न हार दे डाला। सभी देवताओं ने महादेवी को नाना अलंकारों से अलंकृत एवं विविध प्रहरणों से सुसज्जित कर उनसे असुर विजय यात्रा के निमित्त प्रार्थना की। रणदुंद विध्वनि से विश्व चराचर

इन्हीं मूर्ति का परिग्रह धारण कर फूका अपना शंख, देवी के रणाहवान का अनुसरण कर ससैन्य दौड़ परा महाबलशाली महिषासुर। असुर राज देख स्तंभित हुआ, तेजस्विनी महालक्ष्मी की तेज प्रभा से त्रिलोक ज्योतिर्मय हो उठे। उनका मुकुट आकाश का चुंबन करने लगा, पदभार से सारी पृथ्वी नष्ट हो गई और धनुषंकार से प्रकंपित हो उठा संपूर्ण रसातल। देव सेनापति ने महाशक्ति के जय मंत्र के गुण से

महिषासुर का भीषण संग्राम छिड़ा, देवी के अस्त्र प्रहार से दैत्य सेना छिन्न भिन्न हुई। महिषासुर क्षण क्षण पर रूप परिवर्तन कर अनेक प्रकार के कौशल का करने लगा विस्तार। महिष से हस्ती बना सिंह रूपी दैत्य की रण रमत्वता को देवी ने क्षण में प्रशमित किया। तत्काल वे इंद्रजालिक नयन विमोहन पुरुष वेश में प्रकट हुआ। देवी के हाथों प्रत्याख्यान हो वे पुनः महिष मूर्त

0: समान सारे रण क्षेत्र में विध्वंस करने लगा शत्रुओं को। नाना प्रहरण धारिणी देवी दुर्गा ने मधुपान करते हुए महिषासुर को ललकारा।
1: गर्ज गर्ज स्खलन बुढ़ो मधु यावत पिबाम्य हम, मैं आत्तै हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता।

स्वरूप स्थितया तवैतदप्या यथे कृष्णम् अलङ्घ्य वीर्ये मोङ्गवैष्णवी शक्तिर् अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् स्वाङ्गवै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु तवैकया पूरितमम्ब यैतत् कापि स्तुतिः सद्य परापरोक्तिः स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी स्वंसूता सुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य निजि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकषादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ

नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते अंशयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूप धारिणी कौशाम्भशरिके देवी नारायणी नमस्ते त्रिशूल चंद्राही धरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपे।

असुरासृग बसापंक चित्तस्ते करज्वल शूहाय खड़गो भवतु चंडिके वांगनथा वयम् भोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टा त्वामश्रितानां नवीपन्नराणां त्वामश्रिता झाश्रयथां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कदलं तयाद्य धर्मदिशा देवी महासुराणां रूपैर् अनेकैर् बहुधात्ममूर्ति कृताम्बिके तत्प्रकरति तान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या ममत्तगत्ते अतिमहान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांषि यत्र ग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र धावानलो यत्र तदाब्धिबन्धे तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारसीति विश्वं विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यं यथा असुरवधादधुनैव सिद्ध्य पापानि सर्वजगदाञ्च शमनयाशु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गान् प्रणतालां

सगुण अवस्था में देवी चंडिका अखिल विश्व की प्रकृति स्वरूपिणी है। परिणामिनी नित्या वाक अथवा सरस्वती वे ही श्री अथवा लक्ष्मी है। पुनः

महिषासुर मर्दिनी। महालय के पावन अवसर पर आप सुन रहे थे देवी आराधन का ये विशेष कार्यक्रम। मूल आलेख बानी कुमार, हिंदी रूपांतरण दीप नारायण मिठोलिया, श्लोक पठन बीरेंद्र कृष्ण भद्र, वाचन और संगीत संयोजन पंकज कुमार मल्लिक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महालया पर विशेष कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी, रिले किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पर। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।